लम्हा जरा गौर से सुनिए। कामयाबी का मियार सिर्फ दावा नहीं बल्कि नतीजा हो तो फिर नाम याद रखिए, राइजिंग पाकिस्तान इस्लामिया पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज बटग्राम। मुख्तसर अरसे में बेहतरीन तालीमी कारकर्दगी, शानदार नताइज। हालिया मेट्रिक बोर्ड इम्तिहानात में जिला भर में पहली पोजीशन के साथ साथ 117 तलबा में 112 तलबा की A1 ग्रेड में कामयाबी। ठहरिए, सिर्फ यही नहीं बल्कि इदारे के पहले बैच के 2 तलबा का यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पिशावर में मेरिट पर दाखला। यही है मियारी तालीम की पहचान। राइजिंग पाकिस्तान इस्लामिया पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज बटग्राम में नर्सरी ता FA, FSC, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस की बेहतरीन तालीम। जदीद साइंस व कंप्यूटर लैब।

والجناب والجناب साथ साथ ही जो लोग मोटरवे या जीटी रोड पर ड्राइविंग कर रहे हैं भाई उनको कहेंगे वेलकम वेलकम बट ड्राइव केयरफुली अपना भी ख्याल रखें और दूसरों का जो रोड क्रॉस कर रहे हैं क्या पता भाई कल उसकी शादी है वो

0: लम्हा जरा गौर से सुनिए। अगर कामयाबी सिर्फ दावा नहीं बल्कि नतीजा हो तो फिर नाम याद रखिए राइजिंग पाकिस्तान ग्राम। मुख्तसर अरसे में बेहतरीन तालीमी कारकर्दगी नताइज। हालिया मेट्रिक बोर्ड इम्तिहानात में जिला भर में पहली पोजीशन के साथ साथ 117 तलबा में 112 तलबा की A1 ग्रेड में कामयाबी। ठहरिए, सिर्फ यही नहीं बल्कि इदारे के पहले बैच के 2 तलबा का यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पिशावर में मेरिट पर दाखला। यही है मियारी तालीम की पहचान। राइजिंग पाकिस्तान इस्लामिया पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज बटग्राम में नर्सरी ता FA, FSC, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस की बेहतरीन तालीम। जदीद साइंस व कंप्यूटर लैब, जदीद लाइब्रेरी, ट्रांसपोर्ट की सहूलत इत्मीनान और जिम्मेदारी के साथ। छठी जमात से 12वीं जमात तक बच्चियों के लिए अलीहदा सेक्शन। प्राइमरी सेक्शन के लिए तजर्बाकार फीमेल स्टाफ। वी आर राइजर्स। महदूद नशिस्तों पर दाखले जारी है। पता याद रखिए, राइजिंग पाकिस्तान इस्लामिया पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज, नजबेंट ऑफ खैबर बटग्राम। फोन नंबर 0356535207।
1: बटग्राम हलको दफारा दो खुशहाली जेरे उस तासुला बल जायदलू जरूरत निश्ता स्तासु पर अखपल हार बटग्राम के डेर मियारी और द जरूरत टूल सीजन में लावे दलेशी लक दाल चावल हर किस्म मसाले लक हाफिज काबली पुलाव हाफिज सालन मसाला और हाफिज बिरयानी मसाला और द कमाल खबर पके दादा चले यो किलो मसाले सरा दो डबी फ्री कोल्ड ड्रिंक्स और हर किस्म जूस वर्स रहम मिलावेगी दमाशुमान द पारा द हर एक अपने वारा और स्ट्रैंड एंड पेम्पर हम मिलावेगी लकराहत स्नाइपीस और रूम पर्स नुबिया हम नंत शरीफ रोड़े रियाज करियाना एंड जनरल स्टोर बटग्राम था अवतर ला सके द कोर टोल राशन हम पर होल सेल और हम पर परचून और पता याद साथे रियाज करियाना एंड जनरल स्टोर यूनाइटेड मार्केट बटग्राम दनूर मालूमात द पारा पदे नंबर राबता होके असद हान 0347-61-064-17 मोहम्मद रियाज 0356-32-017 और PTCL नंबर हम याद साथे 0997-310-490 रियाज करियाना स्टोर द इत्तेमाद और द क्वालिटी नुम।
2: अस्सलाम वालेकुम ग्रानु मीना वालो जिम मशाल खान और तासु और रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम रेडियो अमन और दूडी रडेरा मनना।

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4, खुश रहने का जज्बा।

0: ये है कमल चाय का पाकिस्तान।
1: दा चल कप समा दे और कप अगर दे वो हल ये कमर दे। कमर चाय द पाकिस्तान नंबर वन चाय, रंग बे मिसाला खंद ला जवाबा। कमर चाय द पाकिस्तान मशहूर चाय दा कुमच द पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान पहर कोर और पहर होटल के इस्तेमाल की।
2: नेमनी नेमनी दो सौ अजल वर्तमान हम द कमर चाय वही दी हो पलाला बई मनी सो दे लाची और द बाजार न बई द कमर चाय पजे नूर बेखंद चेहरा पा महकड़ी हुई
3: दाजल ब कमर चाय रावड़म खुदा बराता चरता मिलाउशी
1: दा बताता पो बटाग्राम कुजबांडा मेरा बांडीगो चतर प्लेन ताकोट करग और बना बाजारों ने लावा द बटाग्राम और अलाई पहर गट और उड़ू की जनरल स्टोर की मिलावीगी। पो बटाग्राम की द पीएसओ पंप सर नजदीक द सलीम एंड ब्रदर्स दुकान नहम अखस्तले शई द कमर चाय पाड़ा नूर मालूमात पदी नंबरों तरला सकवले शई 0320 900 0020 बल नंबर दे 0314 92 490 83।
4: जहाँ मीठी बोलियाँ बोली जाए
0: वहीं बनता है कमर चाय का खूबसूरत पाकिस्तान। कमर चाय
5: ओह खुदाया वादरान इस देशो और द जामो ही सपता होने लगेगा टोल बाजार में चांद करो और दस रफा की सुटून में उन्हें मुंतल और चर्त चु डिजाइन लिखे हुई अल तब बीही आसमान सर खबरें गयी उधड़े में वही चिचरत लाहौर या पे खबर तलाड़म
6: खुश खबरी बटाग्राम दुकानदारान उला और उदा करेंगे आमो खलकुला ओस पे खबर और लाहौर तदतलो जरूरत निश्त दे दिल तासुर टोलू ता बेहतरीन क्वालिटी अगा मिलावी दलेशी अवाल ता वली औजान वली तंग कलचे राम क्लाउड हाउस बटाग्राम किश्ता नो दबल से गुफ्तना सदा
5: राम क्लाउड हाउस बटाग्राम खहा अल तसिश्ता
6: दहर जा दवस मुताबिक दवदुनो औखादियो द जामो गोरपी का जुनिश्ता मसलन दहगुई द पिंजो सुटुनो पैकेज चिपुखा पिंज दिश दर रुपए वो उस यवाजी पोश पार्टस निम जर रुपए की दी चिपके द खादे बकायदा कालीन मरीना खास सूट टिश्यू और प्रिंट शामिल दी
5: वावा द हुडी रखा मामला दा बिल्स पैकेजो मिश्ता
6: आओ वलीना द हुई बल द तो सुटनो वाला पैकेज दी चिपुखा पिंज पंजो जर रुपए वो उस यवाजी पर पिंज देश जर रुपए की मिलावेगी परे की शादी फ्राक निकाह सूट अड्डाना टिश्यू डिजाइनर काटन सूट लॉन प्रिंट स्विस मेहंदी सूट वन पीस लॉन और दिनोर शहाना काली शामिल दी
5: रिख्तिया दासी आला क्वालिटी प्रीमियम स्टाइल और दुमना मुनासिब कीमतुना या इंतजार से ला पाया राधा ची हम उस लाड़
6: जी नो पता याद साथ ही राम क्लॉथ हाउस नसीम मार्केट बटाग्राम और द्वीम ब्रांच दे लेडीज मार्केट बटाग्राम नोरो मालूम तो दपारा या ऑर्डर दपारा पदी नंबर हुमा राबित कवली शे 0356-75-501 और बिल नंबर दे 0356-95-022 राम क्लॉथ हाउस सासु दखादियो और उदर रंगुनो जामेन।

0: 5146 बल नंबर दे 0391 21 162 अल सईद क्लॉथ हाउस एंड गारमेंट सेंटर द खुशालई में
1: तासो औरे रेडियो अमन रेडियो अमन द अमन आवाज स्तासु आवाज
2: अमन दा कलम पजोर बदल तरावलूंगा
3: एक लम्हा जरा गौर से सुनिए
2: तरावलूंगा
3: कामयाबी का मियार सिर्फ दावा नहीं बल्कि नतीजा हो तो फिर नाम याद रखिए राइजिंग पाकिस्तान इस्लामिया पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज बटग्राम मुख्तसर अरसे में बेहतरीन तालीमी कारकर्दगी शानदार नतायज हालिया मैट्रिक बोर्ड इम्तिहानात में जिला भर में पहली पोजीशन के साथ साथ 117 तलबा में 112 तलबा की A1 ग्रेड में कामयाबी ठहरिए सिर्फ यही नहीं बल्कि इदारे के पहले बैच के 2 तलबा का यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पिशावर में मेरिट पर दाखला यही है मियारी तालीम की पहचान राइजिंग पाकिस्तान इस्लामिया पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज बटग्राम में नर्सरी ता FA FSC प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस की बेहतरीन तालीम जदीद साइंस व कंप्यूटर लैब जदीद लाइब्रेरी ट्रांसपोर्ट की सहूलत इत्मीनान और जिम्मेदारी के साथ छठी जमात से 12वीं जमात प्राइमरी सेक्शन के लिए तजुर्बाकार फीमेल स्टाफ वी आर राइजर्स कॉलेज नजबैंक ऑफ बटग्राम फोन नंबर 0356352007
4: बटग्राम हलको दफारा दो खुशालई जीरे उस तासुला बल जाय दतलू जरूरत निष्ठा स्तासु पर अखपल हार बटग्राम के डेर मियारी और जरूरत टूल सीजन में लावे जलेशी लक दाल चावल हर किस्म मसाले लक हाफिज काबली पुलाव हाफिज सालन मसाला और हाफिज बिरयानी मसाला और द कमाल खबर पके दादा चले यो किलो मसाले सरा दो डबी फ्री कोल्ड ड्रिंक्स और हर किस्म जूस और सरहम मिलावेगी द माशुमानो द पारा द हर एक अपने वारा और स्ट्रैंड एंड पेम्पर हम मिलावेगी लकराहत स्नाइपीस और रूम पर्स नुबिया हम नन तशरीफ रवड़े रियाज करियाना एंड जनरल स्टोर बटग्राम था और तरला सकई द कोर टोल राशन हम पर होलसेल और हम पर परचून और पता याद साथे रियाज करियाना एंड जनरल स्टोर यूनाइटेड मार्केट बटग्राम द नूर मालूमात द पारा बड़े नंबर रब्ता होके असद हान 0347 61 064 17 मोहम्मद रियाज 0356 32 017 और PTCL नंबर हम याद साथे 0997 310 490 रियाज करियाना स्टोर द इत्तेमाद और द क्वालिटी
3: क्या आप अपने बच्चे के रोशन महफूज और कामयाब मुस्तकबिल के लिए बटग्राम में तलाश में हैं? तो फिर आइए स्काईहॉक इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज बढ़ियत एतिमाद और कियादत की तामीर भी हमारी अव्वलीन तरजीह है नर्सरी से लेकर FSC तक मियारी इंग्लिश मीडियम तालीम प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस और आर्ट्स के बेहतरीन प्रोग्राम काबिल और तजरीबाकार असातिज़ाए कराम जदीद तदरीसी तरीक़े कार कंप्यूटर और साइंस की जदीद लेबोरेटरियां पुरसकून और महफूज तालीमी माहौल तलबा व तालिबात के लिए मियारी व महफूज ट्रांसपोर्ट की सहूलत तालिबात के लिए कॉलेज सेक्शन में अलीहदा क्लासेस का इंतजाम यहाँ निसाबी तालीम के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों ذہنی و جسمانی نشوونما اور عملی تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے محدود نشستوں پر داخلے جاری ہے اپنے بچوں کے بہتر تعلیم و تربیت کے لیے کل نہیں آج ہی تشریف لائیے اسکائیہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹگرام جہاں خوابوں کو ملتی ہے کامیابی کی پرواز
5: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کے بچے ساسو دا ہر قسمہ مرض علاج کولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دوسری کے دل

0: लम्हा जरा गौर से सुनिए। कामयाबी का मियार सिर्फ दावा नहीं बल्कि नतीजा हो तो फिर नाम याद रखिए, राइजिंग पाकिस्तान इस्लामिया पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज बटग्राम। मुख्तसर अरसे में बेहतरीन तालीमी कारकर्दगी, शानदार नताइज। हालिया मेट्रिक बोर्ड इम्तिहानात में जिला भर में पहली पोजीशन के साथ साथ 117 तलबा में 112 तलबा की A1 ग्रेड में कामयाबी। ठहरिए, सिर्फ यही नहीं बल्कि इदारे के पहले बैच के 2 तलबा का यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पिशावर में मेरिट पर दाखला। यही है मियारी तालीम की पहचान। राइजिंग पाकिस्तान इस्लामिया पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज बटग्राम में नर्सरी ता FA, FSC, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस की बेहतरीन तालीम। जदीद साइंस व कंप्यूटर लैब, जदीद लाइब्रेरी, ट्रांसपोर्ट की सहूलत इत्मीनान और जिम्मेदारी के साथ। छठी जमात से 12वीं जमात तक बच्चियों के लिए अलहदा सेक्शन। प्राइमरी सेक्शन के लिए तजर्बाकार फीमेल स्टाफ। वी आर राइजर्स। महदूद नशिस्तों पर दाखले जारी हैं। पता याद रखिए, राइजिंग पाकिस्तान इस्लामिया पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज, नजबैंक ऑफ खैबर बटग्राम। फोन नंबर 0356-35-207।
1: सारा दास दी माशुमान यो खवा और तो बलखवा कपड़ो शॉपिंग दपारबा तरसो मुंगा बाजारों की गर्जो।
2: ओ हो सरिया परेशान की गमा ददी मसले रासरा डेर खेस्ता कल दी।
1: आगा सो
2: अल सईद क्लाक हाउस एंड गवर्नमेंट सेंटर द सड़ो तपारा हम मायारी अवर सुटी ने मिलावेगी लक ग्रेस टैम टेक्स इडमानी पाशा अलकरम और नोर मल्टी नेशनल ब्रांड्स और जनानो दपारा मारियाबी मरीन सफायर निशात ऑपरेटेड लोन हम मिलावेगी और दाला सके दमाशुमान दपारा हम फैंसी कपड़े हम मौजूद दी
1: मतलब यो छत लांदी दा टोल सामान
2: आओ आओ तो यो छत दलांदी दा हर से मिलावेगी।
1: वाह वाह वाह वाह ब्याहो बेलू बेलू दुकानों ता दतलो जरूरत निश्ता
2: आओ जी बिल्कुल पूरा फैमिली शॉपिंग दपारा सिर्फ योनू अल सईद क्लाथ हाउस एंड गारमेंट सेंटर बटग्राम तासु दखोखी दुकान नो पतायात साथे अल सईद क्लाथ हाउस एंड गारमेंट सेंटर बटग्राम नीस PSO पम अल फकीर शॉपिंग प्लाजा बटग्राम और पते दर नकलती की नो सईद खालिद शाह और परवेश शाह सरा पदे नंबर और राबिता कोले शे 0351-33-640 बल नंबर दे 0391-21-162 अल सईद क्लाथ हाउस एंड गारमेंट सेंटर द खुशालीन में।
3: ग्रानो औरिदुन को तसो आवाज और रेडियो अमन 88.4 बट ग्राम।

बेलमेजी में चक्कर दे भाई जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम आज भी दस सिंह है बिल्कुल ठीक ठाक है मैम अवाई चीज मानू मो तो देखो मेरा निकले दे कसी निकले दे हाँ जा बस मेरा डेरे से तो मन ना खुशहाल रहता उससे अब इस तरह सरबल मैसेज

0: वैसे मैं इस पेज को दिन ओपन की गई देवे ने मसल कही यार
1: सादा पेज दस रहा ओपन जी दस सवाई